0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही भरोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: Hi, this is Arbaaz Khan and you're listening to Hanji Radio 167 4 AM.
4: Hi,

0: नेक्सस।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे चुन रहे हैं रेडियो।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184812.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: Hi, this is Richard Chanda and you're hearing me on Radio Hanji 1674 AM.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी। इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184-812.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना? तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1674 AM।

0: अभी दिखाई। नहीं नहीं, स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा, अति होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते ने।
1: नंबर दा दे बांसल इमिग्रेशन वालिया दा।
0: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाने लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हां जी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हां जी 1674 AM। थैंक यू।

0: हावे सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है
3: मेरे, मेरे, मेरे।

नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: छोटी जी एक ब्रेक ले लिए जी। ब्रेक तो बाद शाम नू 5 बजे प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ नहीं इनसाइट रिपोर्ट लेके हो रहे हैं हाजर। उदों तक दे लई कुछ ब्रेक फिर गाने सुनो ते गल्लां बातां भी करदे हैं नाल नाल। रेडियो हाँ जी 1674
1: एम। सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184812.
1: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ।
4: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
1: ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 04314651186 ਤੇ 212216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
6: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: 把你骂的
1: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184-812.
2: तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
4: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. Sunte rahiye, sunate rahiye, bajate rahiye, jo karna hai, kariye.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग योर ड्रीम होम, मेक इट ट्रूली ग्रैंड विद कैपलन होम्स अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी पैकेज। गेट टॉप 10 ग्रैंड अपग्रेड्स इन वन अनबीटेबल पैकेज प्राइस, इंक्लूडिंग 3 meter ग्राउंड फ्लोर सीलिंग्स, 2.7 meter टॉप फ्लोर सीलिंग्स, लार्ज पोर्सिलिन टाइल्स, प्रीमियम टिम्बर लुक फ्लोरिंग, ग्रैंड फीचर डोर्स, स्टाइलिश ब्लैक फिनिशेस एंड स्मार्ट कीलेस एंट्री, प्लस अ लाइफटाइम स्ट्रक्चरल गारंटी, लिमिटेड टाइम ओनली। विजिट कैपलन होम्स ऑनलाइन और वन ऑफ आवर डिस्प्ले होम्स इन सिडनी। TNC supply, license 184812।
0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Radio Hanji, 1674 AM.
4: Aaj da vichar, aaj di kahani. Har roz tusi sunde ho show Hanji Melbourne vich. Tuhadi demand utte aao ik vaar fir sunde haan is hafte di ek behtareen kahani.
5: Radio Hanji 1674 AM. Maaf karde hain, din tuhada vadhiya ja reha hoega, chadhdi kala de vich hoge. ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਸਿੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ ਐਂ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਐਡੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀਸਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਕਦੋਂ ਕੁ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਦੋ ਰੁਦੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਤੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਵਾ ਚਿਰ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਲੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਜੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿੜਗਿੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, कुछ चिर ते सुखी सुखी लंघे। उस तो बाद फिर वोटी की डिमांडा वधन लगियां। मैं कई नौकरियां भी कीतियां। उत्थे भी थोड़े चिर बाद मैनू पसंद नहीं आया जां किसी ने कढ़ता। अपना कारोबार खोलिया वह भी नहीं चलिया। वोटी की लगातार डिमांड चल रही ही कि मैं एक महंगा जहा हार लेना। वैसे तो मेरी औकात नहीं ही। मैं सोचा चोरी करके दे देना। उसे चोरी करन दे समय मैं फड़िया गया तो हुणे मेरे हाथ वड्डन लगे ने। मेरी तौबा, मैं अगे तो कदी कुछ इहो जिहा नहीं करूँगा। मैं सारा कुछ छड्ड के तुहाडे नाल आश्रम दे विच आण के रहण लग पूंगा। मैनू बचाओ, जिदा भी हो सकता मैनू बचाओ। गुरु ने राजे दे नाल गल कीती। राजे दे मन दे विच दया आ गई। राजे ने छड्ड दिता ते हुण जिद कर रहा, गुरु जी मैं तुहाडे नाल आश्रम दे विच ही जाणा। जो तुसीं कहोगे मैं उही करना। जिहड़ा भी कम कहोगे मैं करन दे लई तैयार हां। मैं हुण इस दुनियादारी दे विच नहीं रहना चाहुंदा। गुरु ने कहा तू मेरे नाल आ सकदा पर हुण शर्तां मेरियां होणगियां। रस्ते दे विच तुरे जा रहे ने। एक जगह दे उत्ते एक तलाब दे उत्ते खड़े ने। गुरु ने कहा वो सामने बंगला वेखदा। हाँ जी गुरु जी, उहदे विच की खास है? तैनू पता वह भी ध्यान दे विच बैठा। तो मन ही मन फिर हसदा। गुरु ने फिर उही गल्लां शुरू करतियां। हले गल्लां कर ही रहे कि बंगले ने अपनी चुंझ पानी दे विच उतारी ते अपना राशन कढ के खाण लग पिया। गुरु ने कहा वेख्या ये अपने ध्यान दे विच बैठा सी। इन्हें ध्यान केंद्रित किया ही कि कदों इहदा शिकारे दी रेंज दे विच आवे। मैं चुंझ च फड़ां ते खावां अपनी भुख मिटावां। तैनूं पता तेरी समस्या की ही? तू ध्यान नूं समझ ही नहीं पाया जदों तू आश्रम चों गया सी। तैनूं मैं एक गल कही ही कि रोजमर्रा दी जिंदगी दे विच वी तेरे ध्यान काम आउणा। जरूरी नहीं कि तू साधु बनेगा, रब दे राह ते चलेगा ते फिर ही जाके तेरे ध्यान काम आउणा। ध्यान तां पल पल तुहानूं चाहीदा। जे तुहानूं अहसास होवे ते इसे वजह करके तू किते कामयाब नहीं होया। तू कहना मैं जाके नौकरी कीती, नौकरी दे विच तैनूं कढ दित्ता जांदा ही जां तू छड्ड के आ जांदा है। पता क्यों? कोई तो उत्थे ध्यान नहीं ला पाया। तू अपने कारोबार दे विच घाटा खाधा। मैनूं यकीन है कि उत्थे भी तू अपना ध्यान नहीं ला पाया। अपने घर दे विच वोटी तेरे तो खुश नहीं। आए दिन वध रहियां डिमांडां। इहदा मतलब कि तू परिवार दे विच भी ध्यान नहीं ला पाया। ना तू अपने आप नूं समझा पाया ते ना अपनी वोटी नूं समझ पाया। दुनियादारी दे विच भी तेरा ध्यान नहीं लगा। होर ते होर तेरा ते चोरी च भी ध्यान नहीं लगा। चोरी भी ध्यान नाल कीती हुंदी ते फड़िया ना जांदा। वह भी कितें बेध्यानी करन चल गया। मैं तैनूं बंगला इस करके विखाया कि सिर्फ इंसान ही नहीं, ये पंछी, ये जीव जंतु, ये जानवर, जिन्ना कुछ भी तू वेखदा, ये रुख, जो भी तेरी नजरी पैंदा, ये सारे ध्यान करते ने। जिन्ना चिर तक ये ध्यान नहीं करनगे उन्ना चिर तक ये अपनी मंजिल ते नहीं पहुँच पाउणगे। उन्ना चिर तक इन्हां दा ढिड नहीं भर पाऊगा। उन्ना चिर तक ये इस खूबसूरत धरती ते विचर नहीं पाउणगे। हर एक चीज ध्यान मंगती है। जिनी छेती ध्यान नूं समझ लेंगा उन्नी छेती तू जिंदगी दे विच सफल हो जाएगा। ते जिथे जिहड़े भी पासे जाना चाहुंदा जा चलिया जा। अपने घर जाना चाहुंदा जा चलिया जा। कारोबार करना है, नौकरी करनी है, जा चलिया जा। मेरे नाल आउणा है, तू रब दे राह चलना, दुनियादारी छड्डनी आ, जी सदके आ। पर जिथे भी किते जाएगा ध्यान तेनू जरूर लाना पैना। बेध्याने जिंदगी दे विच सिर्फ धक्के ही खाएगा। जे तू एडा ही ध्यान लाने वाला हुंदा ते तेरा प्यो तेनू आश्रम च ना छड्ड के जांदा। जे तू एडा ही ध्यान लाने वाला हुंदा ते तेरा प्यो पुछ गिछ करन जरूर आउंदा कि मेरा पुत गया किथे। मैं समझ सकदा कि तू अपने परिवार दे विच अपने मां प्यो दे नाल रहिंदिआं वी किसे पासे ध्यान नहीं लाया। ये तो एक इहो जिही चीज़ आ जिहड़े पासे नूं ला लेंगा उधरले पासे तरक्कियां ही तरक्कियां, उधरले पासे ही तेरे राह पद्धरे हुंदे जाणगे। आपां वी अपने अंदर एक झाती मार लईए एक वारी कि आपां ध्यान दे नाल कोई कम कर रहे हां, कि आपां किसे कम कार दे उत्ते जां नौकरी दे विच महसूस तो नहीं करते कि अं कामयाब नहीं होए, तो फिर उत्थे हो सकता तुहाडी एकाग्रता की कमी होवे, कमी होवे तुहाडे ध्यान लाउण दे विच। बहुती वारी आपां वी शायद ध्यान नूं अध्यात्म नाल जोड़ के वेख लैने, हर एक चीज़ जिहड़ी तुसीं पाउणी चाहुंदे हो जिहड़ी तुहानूं चंगी लगदी है उत्थे तुहानूं ध्यान केंद्रित करना ही पवेगा। आस करदे हां अज दी कहानी तुसीं पसंद कीती होएगी।
4: धन्यवाद कहानी सुनन लई। जे तुहाडे कोल भी है अजिही ही कोई मोटिवेशनल अते इंस्पायरिंग कहानी तां तुसीं सानूं मैसेज या ईमेल कर सकदे हो। जे कहानी वधिया लगी तां रेडियो हांजी दे यूट्यूब चैनल तों इस नूं जरूर शेयर करो अते होर भी कहानियां विचार खबरां अते इंटरव्यू सुनन लई सबस्क्राइब करो रेडियो हांजी दा यूट्यूब चैनल।
6: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
7: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
6: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
8: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
9: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
8: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
9: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
8: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
9: आहो जी आहो,
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां।

0: शो। हां जी मेलबर्न विच तुहाडी डिमांड उते आओ एक बार फिर सुनदे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
1: रेडियो हां जी 1674 समा हो चुका अज दी कहानी दा। कहानियां 2013 दी। एक बेकार व्यक्ति, एक होमलैस, जद को रहन दे लई छत भी नहीं गलियां दे विच सौंदा, उत्थों ही मंग के अपना खाण पीण दा गुजारा कर लैंदा। 55 साल दी उम्र, ना सी बिली रे हैरिस। कंसास दी एक गली दी नुक्कर दे विच बैठ के हाथ दे विच एक कप फड़ी रखदा ते जिहड़ा भी कोई लंघदा उहदे कोलों कोई तेली चवानी दी मंग करदा तां कि अज मेरे रहण दा गुजारा हो जाए, अज मेरे खाण पीण दा कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाए। कोई बहुत वड्डियां इहदे मुताबिक इहदियां आसां उम्मीदां नहीं सी, सिर्फ उस दिन का गुजारा हो जाए, अगले दिन फिर दोबारा फिर कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जूगा। इसे तरह के नाल दिन गुजर रहे कि अचानक एक दिन एक लड़की आके इहदे कप दे विच आस तों कुछ वधेरे पैसे पाउंदी। वेख के हैरान होया कि तू मैनू इन्ने पैसे क्यों दे रही है। तो उस लड़की ने कहा, मैं ये सिख्या कि जदों तुसी चंगा किसी का कर दे ते तुहाडे नाल चंगा हुंदा, इस करके मैं तुहानू वध पैसे दे रही हूँ, मैनू लगता तुसी लोड़वंद हो। बिली ने धन्नवाद किया ते कहा, तेरा शुक्रिया, अज मैनू सड़क ते नहीं सौना पऊगा। धन्नवाद लैके यह लड़की जिहदा नां सहरा सी उस जगह तो एक मुस्कुराहट वंडदी हुई चली गई। उहदे जाण तो बाद बिली ने जदों अपना कप चैक किया ये वेखण दे लई कि हुण उहदे कोल किन्ने क पैसे हो गए ने, अचानक ध्यान एक मुंदरी दे उत्ते पैंदा ते बिली नूं एकदम समझ आ गई कि उसे लड़की दी रिंग है जिहड़ी मैनूं पैसे दे के गई सी। इधर उधर वेखण दी लभण दी कोशिश कीती पर उस समय उस लड़की नूं ना लभ पाया। सोचा कि दुकान दे उत्ते जाके इहनूं वेच दिंदा, मन दे विच शायद एक वारी ते जरूर खोट आई। दुकान दे उत्ते पहुंच गया, जाके पुछया तां दुकानदार ने कहा कि काफ़ी महंगी रिंग है, इहदे तैनूं काफ़ी सारे पैसे मिल सकते ने। $4,000 की यह रिंग जिहदे नाल उहदे काफ़ी मसले हल हो सकते। $4,000 दे उत्ते सहमति होगी। पर अचानक जदों दुकानदार पैसे देन लगा तां मन दे विच पता नहीं क्यों फिर विचार आया, चंगा करोगे ते चंगा होवेगा, ये उस लड़की ने कहा सी, जां फिर इदां कह लो कि उहदे चंगेपन ने बिली नूं ये करन नहीं दिता। रिंग लैके वापस आया ते उहनूं लभणा शुरू कर दिता। कोई पक्का टिकाणा पता नहीं सी, आस पास हर एक उस दफ्तर दे विच गया जिथे उहनूं लगदा सी कि शायद ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿੰਗ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਇਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਸਹਿਰਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ एक इहदे लई एक फंड चलाया, डोनेशन इकट्ठी कीती। पैसे रखे तो थोड़े सी, पर लोगों के वलों दुनिया भर के इहोजिहा रिस्पोंस आया कि 1,90,000 डॉलर इकट्ठे हुए, जिहदे नाल के बाद विच बिली ने घर भी लै लिया। उन्हूं सड़कां दे उत्ते भी नहीं सौना पिया, हुण उह अपने बाकी परिवार नूं भी नाल लै आया। ते जदों इह कहानी घड़ी गई, जदों इह आर्टिकल छपे, उस समय तक कहा जांदा है कि हाले भी उह हफ्ते दो हफ्ते आपस दे विच जरूर मिलदे ने, यानी कि उहनां दी सांझ हुण पक्की पै चुकी है। बिली ते सारा दे परिवार दी सांझ इक ऐसी सांझ पै चुकी है जिहदियां मिसालां शायद जग दे उत्ते बहुत घट मिलदियां ने। ते इह उह कहानियां जिहदे करके आपां कह सकदे हां कि जे तुसीं चंगा कर दिओ ते तुहाडे नाल चंगा जरूर हुंदा। इह छोटियां छोटियां कहानियां जिहड़ियां किसे फिल्म तों घट नहीं, पर इस जग दे उत्ते जरूर वापरदियां रहिंदियां ने। इस करके अपना तुसीं चंगा करना ना छड़ो, ते तुहाडे नाल चंगा होणों भी कोई नहीं रोक सकता। हमेशा मन दे विच रखो कि आपां किसी दा चंगा करना, चंगा करना, चंगा करना, क्योंकि ये मौका तुहानूं वार वार नहीं मिलता। ते जदों मिलता उदों तुहानूं पल छिण दे विच ही इहनूं अवेल करना पैंदा। एक ऐसा चैक है, जे तुसी नाल दी नाल किते कैश करा लिया करा लिया, जे नहीं तो फिर सारी उम्र कदे सोचते ही रह जाओगे कि मैनू भी मौका मिलिया सी, मैं भी चाहुंदा जां मैं भी चाहुंदी, तो मैं भी किसी कहानी दी, मैं भी दुनिया के लिए किसी एग्जाम्पल दी जां एग्जाम्पल दा पात्र बन सकता है। जो इस करके कहिंदे ने कि अपने आप नूं एक कमांड हमेशा दे के रखो, मैं चंगा करना, मैं किसी का भला करना, ताकि जो मौका आए तो फिर उस समय तुहानू बहुते सोच विचार की लोड़ ना पवे। आस करते हैं कि अज की कहानी तुसी पसंद की होगी।
0: ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ।

0: thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184812.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: Hi, this is Richard Chanda and you're hearing me on Radio Hanji 1674 AM.

0: तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।
1: हाँ जी 16

0: रास्ता।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice.
5: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji

पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना जस्सी गिल ते तुसी मैनु सुन रहे हो रेडियो हांजी ते 1674 AM।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोडे नाल मोडा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: ਸਤਿਕਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे।

0: हाई सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा चा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
2: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ये है 8 साला तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
3: हाँ जी रेडियो।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।
3: ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਜੋ ਹਾਨੀ ਸਿੰਘ।

सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी, सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर। हां जी, हां जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674। सुनते रहो, सुनते रहो। हां जी, AM।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।

0: जो हाँ जी 1674।
1: आजा प्यार की होड़ी ले।
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हवा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील करा से।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.
0: Ta-

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: परम पद पाए।
1: इसते ऊपर नहीं विचार, जाकै मन बसिया निरंकार।
0: बंधन तोर पै निर्वैर, अंदिन पूजै गुर के पैर।
1: यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले।
0: साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो परमानंद।
1: राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार।
0: अमृत वचन हर की गुण गाओ, प्राण तरुण का हे सुआओ।
1: आठ पहर प्रापी खुह नीरा, मिटै अज्ञान बिन सहंदीरा।
0: सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छा नानक फल पावो।
1: हलत पलत दोइलिहो सवार, राम नाम अंतर उरतार।
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिसमन बसै ते साच परीखिया।
1: मनता नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए।
0: सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी।
1: टीका टीक रखो मन माही, नानक बहुर न आवै जाहे।
0: रिश्ते दूर कहा को जाए, उबरे रखन हार ते आए।
1: निर्भउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै।
0: जिस प्रभ रखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख।
1: चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार।
0: सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ता कह कारज पूरा।
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेख तु उदरत श्रेष्ट।
0: चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप।
1: तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।
0: जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट न आवत काल।
1: अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया।
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भल जना कै मन विश्राम। अठ बाई श्लोक।
1: ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा।
1: सगल समिग्री एक स्कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा हे।
0: नौनद अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम।
1: सुन समाद अनहत है नाद, कहन न जाई अचार्य विस्माद।
0: इन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक ते संसो जी पाए।
1: सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहे आप भगवंत।
0: करण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल।
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म।
0: पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंड दै दिसै समाहे।
1: जिसते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ।
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नखत्र मैं एक।
1: वाणी प्रभु की सब को बोले, आप अडूल न कबहु डूलै।
0: सर्व करा कर खेलै खेल, मोल न पाइए गुणे अमोल।
1: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत, धारहि ओ स्वामी ओत पोत।
0: गुर प्रसाद परम का नाश, नानक तिन मैं एहो विसास।
1: संत जना का पीखन सा ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म।
0: संत जना सुने सो बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन।
1: जिन जाता तिस की एह रहत, सत बचन साधु सब कहत।
0: जो जो होए सो इश्क मान, करण करावन हर प्रभ जान।
1: अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सा मोही।
0: आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत।
1: तिस पावे ता करे विस्थार, तिस पावे ता एकंकार।
0: अनक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए।
1: कवन लिखत कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर।
0: अंतर गज से आप जनाए, नानक तिस चन आप बुझाए।
1: सर्व भूत अवतारा, सर्व नैन आपे खनहारा।
0: सगल समगरी जा का तना, आपन जस आप ही सुना।
1: आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया।
0: सबके मदल पत्तो रहे, जो कुछ कहना सो आपे कहे।
1: आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे ता ले समाए।
0: इसते होए सुनाही बुरा, उरे कहो किने कुछ करा।
1: आप ला कर तू ततनी की, आपे जाने अपने जी की।
0: आप साज तारी सब साज, ओत पोत आपन संग्राज।
1: ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए।
0: इसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक हो जान।
1: जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए ले प्रभ सोए।
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान।
1: धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया।
0: जानावन कहे सुआओ, जन कह संचित आवे ना।
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार।
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भग जना के मन विश्राम। अठ तेई श्लोक।
1: पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे।
1: सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद।
0: आस नित्या गोतरंग, संत जना की दूर मन मंग।
1: आप छोड़ बेनती करहो, साध संग आगन सागर तरहो।
0: हर तन की भर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार।
1: खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद।
0: नरक निवार उद्धारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो।
1: चित चित वो नारायण, एक एक रूप जाके रंग अनेक।
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल।
1: सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार।
0: उत्तम श्लोक साध के बचन, अमोलीक लाल यह रत्न।
1: संत कमावत हो तो उधार, आप तरह लोक कह निस्तार।
0: सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग।
1: जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै।
0: प्रगटे गोपाल महत के माथे, नानक उतरे तिन कै साथे।
1: शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए।
0: मिट गए बैर पै सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन।
1: सो प्रसन्न पय गुरदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव।
0: आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम।

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Namaskar, and once again a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. इतना लंबा हमने सफर तय कर लिया, अब ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं. और कितने सारे वो रहस्य सामने आते जा रहे हैं जो रहस्य लगते थे, लेकिन सच कितना सहज है. अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा की पहचान, और फिर जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय की पहचान. लेकिन अभी भी कुछ और बातें हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हैं, जिनका रहस्य जो है उन रहस्य से पर्दा हटना जरूरी है. तो चलिए आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और हर बार की तरह इस पूरे सफर में हमें जितने भी रहस्य हैं उनसे दूर ले जाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: आपने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम सोल लेवल पर या ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा. उससे पहले एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं कहां से होते हुए आए हैं.
1: हमने सबसे पहले यही देखा कि टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक मैनर. यू नो, टिल नाउ देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन अबाउट ये सृष्टि कब शुरू हुई, अबाउट द क्रिएशन. और जहां क्रिएशन की बात आती तो फिर अब ये बात आने लग गई कि डिस्ट्रक्शन कब होने वाली है इसकी. यू नो, बिकॉज जो चीज क्रिएट होगी तो फिर वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय भी होगी. एंड राइट नाउ वी आर सीइंग द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन, यू नो, एवरीवेयर. एंड उसकी वजह से एक भय, यू नो, एक इनसिक्योरिटी कि आखिर आने वाला समय कहाँ हमें लेकर जा रहा है. और अब तो पर्यावरण की वजह से कहीं ना कहीं, और न्यूक्लियर वेपन्स जो सारे रेडी हैं, और जो बहुत सारे प्रोफेसीज हो चुके हैं, यू नो, बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई है.
0: नास्टोडेमस की अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो लोग तो इतने डरे हुए हैं कि अब होने वाला है.
1: यस, सो एवरीवन इज लुकिंग एट द ईयर नाउ. नाउ इट्स बिकम ईयर स्पेसिफिक, यू नो. पहले था कि ये हो सकता है या ये होगा शायद, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि किस वर्ष में. एंड वो वर्ष भी जो आया है वो बहुत नजदीक लग रहा है कि 2010 2011. तो नाउ वी हैव रियलाइज दैट इट इज विद इन आवर लाइफ टाइम. पहले लग रहा था कि हाँ सृष्टि को कुछ होने वाला है,
0: चलो जब होगा तब देखा जाएगा,
1: जब होगा तब देखा जाएगा. लेकिन अब ये लगता है कि अपने ही इस लाइफ टाइम में होगा. तो समवेयर, इवन दो आई डोंट नो हाउ मच वी पे अटेंशन टू इट, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच बीच में वो डाउट आ जाता है. बट फिर हम उसको फिर इग्नोर कर देते हैं. सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ये लगता है कि जब होगा तो सारी दुनिया पर होगा. अभी तक हम अगर सुन भी रहे थे इन्फॉर्मेशन को तो हम एक नेगेटिव नोट पर सुन रहे थे कि हाँ ये सब होने वाला है, हाय क्या होगा, दुनिया का क्या होगा. बट नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज साइक्लिक, तो फिर रात को डर नहीं लगता. हाँ होता है कि अंधेरा है तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठ जाते कि दिस इज द एंड. हमें क्योंकि ये पता होता है कि रात के बाद सुबह होनी है.
0: इनफैक्ट एक और बात यहाँ जी जोड़ूंगी कि रात में भी रोशनी करने की टेक्निक हमने सीख ली.
1: यस, एब्सोल्युटली, ताकि वो रात भी उतनी तकलीफ नहीं देगी अगर हमें उसमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना आ जाए. एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, बिकॉज वी नो कि नाउ इट्स ओनली अ साइन दैट द मॉर्निंग इज हियर. बस एक थोड़ा सा पीरियड जैसा बीच में है, लेकिन वॉट अबाउट दैट ब्यूटिफुल मॉर्निंग व्हिच इज टू कम. जब हमें ये समझ में आया कि टाइम इज साइक्लिक, वी अंडरस्टूड दैट सोल, मैटर एंड गॉड इज एनर्जी. तो एनर्जी पे फिर कुछ लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. तो energy is constant. तो इसलिए जितनी number of souls है वो fixed है. उसमें ना कोई addition है ना कोई subtraction है. And the other is energy moves from an ordered state. वो पहले एक ordered state में है, जब वो movement या action में आती है तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो ordered state से chaotic stage में आ जाती है. And then another external source of energy intervenes. जो उस क्लोज्ड सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन करती है, एंड दैट रीचार्जेस और रीकिंडल्स दिस सिस्टम ऑफ एनर्जी, एंड इट मूव्स फ्रॉम अ कैओटिक स्टेज अगेन टू एन ऑर्डर्ड स्टेज. तो द सोल एनर्जी अपनी हाईएस्ट स्टेज पे थी, धीरे धीरे धीरे कर्म में आते आते आते इट मूव्स टू इट्स लोएस्ट स्टेज, फिनिश नहीं होती, लेकिन वो लोएस्ट स्टेज वो है जब वो हायर पावर को, जिसको हम परमात्मा, निराकार, शिव बाबा कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ही इंटरवीन्स इनटू दिस क्लोज सिस्टम एंड द सोल गेट्स चार्ज्ड अगेन एंड सो दिस साइकिल विल गो ऑन कि द सोल विल बी इट्स हायेस्ट स्टेज, मूव कम टू इट्स लोएस्ट स्टेज, अगेन गो बैक टू इट्स हाईएस्ट स्टेज. तो हमें समझ में आता है कि थिंग्स आर मूविंग इन अ साइकिल. तो जैसे दिन का साइकिल, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सिमिलरली ऑन अ बिगर लेवल नाउ, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, या हम कहें गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड देन आयरन एज. तो अब आयरन एज में हम आकर पहुंचे. कलयुग ये शब्द तो बच्चे बच्चे के मुंह पर है, कलयुग है. आजकल हम कहते हैं घोर कलयुग है. जैसे आपने कहा कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है और घोर कलयुग है, इसलिए हम धक्के खा रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, दुख अशांति बढ़ गई है. लेकिन अब जब हमें ये पता चलता है कि ये कलयुग के बाद फिर
0: there is that hope, you know.
1: It's not a hope, it's a reality. So it's just that we prepare for that reality. अगर हमें रात के बाद सुबह नहीं है ये ना पता हो तो हमारी रात कैसे बीतेगी. It will feel कि oh, my life will be like this, you know. But हमें पता है कि रात के बाद सुबह है, तो हम लोग उस रात को बहुत स्मूथली क्रॉस कर लेते हैं और सुबह की अपनी तैयारी कर लेते हैं. लेकिन सुबह की तैयारी हम करते हैं ना वो नो ग्लोबल लेवल. सुबह आने वाली है, अब हमें उसकी क्या तैयारी करनी है.
0: वंडरफुल. एक्चुअली यू नो, माइंडसेट चेंज करने की बात है सबसे पहले. ये कहने के बजाय कि सब कुछ खत्म होने वाला है या घोर कलयुग है, वी हैव टू से आवरसेल्फ सुबह आने वाली है. इट मेक्स ऑल द डिफरेंस.
1: इट कांट गो ऑन इन एनी वेज इफ यू लुक एट इट एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, इट जस्ट कांट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर. कब तक कब तक ये चल सकता है? कहीं ना कहीं तो एक जंप आएगा ही, कहीं ना कहीं तो वो परिवर्तन आएगा. तो जब हम सत्युग में थे या गोल्डन एज में थे तो सोल वॉज एब्सोल्युटली फुल, क्योंकि वो अपने घर से मैं आत्मा आई, तो मैं आत्मा 100% प्योर. तो दैट इज दैट पोटेंशियल स्टेट, बिल्कुल फुल, हाईएस्ट एनर्जी, सोल कॉन्शियसनेस, नेचुरल. जो चीज आज एक क्षण के लिए भी याद नहीं रहती है कि मैं आत्मा हूं, वो उस समय में 100% नेचुरल थी. जैसे आज मैं शरीर हूं, ये 100% नेचुरल लगता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता कि मैं ये हूं. उस टाइम मैं आत्मा हूं, इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता था. इट वॉज नेचुरल कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं. लेकिन फिर कर्म करते गए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, दैट हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मूव्ड फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट slowly, but it was a slow process. It was a slow process, gradual, and we have enjoyed that journey. We have. जो आज कई बार लोग पूछते हैं कि फिर ये सृष्टि बनी क्यों, you know, इतना दुख है, इतनी अशांति है, लेकिन कितना समय.
0: अशांति तो अब आई है,
1: अब आई है. ऐसे तो हम कोई भी कर्म करने जाते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हम थक जाते हैं, हम कोई गेम भी खेलते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम वी गेट टायर्ड, बट वी एक्सेप्ट दैट. हम समझ लेते हैं कि 4 घंटे अगर खेलेंगे तो आखिरी के 15-20 मिनट तो थक जाएंगे, और फिर जब थक जाते हैं फिर हम रेस्ट करते हैं और फिर हम अगले दिन गेम फिर खेलते हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ उस 15 मिनट को देखें कि ओ ये गेम खेलने से तो थकेंगे, तो विल बी स्टॉप प्लेइंग द गेम?
0: नो, वी विल नॉट.
1: 3 hours 45 minutes वॉज गुड गेम, 15 minutes पेन. Can't give up the game.
0: But it pains actually, those 15 minutes. So that's the pain we're feeling now.
1: That's the pain. And why are we feeling that pain? Because now we are tired. You know? The soul has really reached its stage where हमें ये याद ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ. तो वो energy level बिल्कुल जैसे finish नहीं. लेकिन it's reached its lowest point. लेकिन now we have the opportunity. Because the highest source of energy, Paramatma, has intervened into the system. So all that I have to do is now
0: connect
1: to him. And I will again move from the chaotic stage to the ordered stage.
0: Okay, before we get into that, how things will transform, how I'll transform, is like, I want to ask you a question. ये जो हम पूरे चार युगों की बात करते आ रहे हैं, ये कई बार हो चुके हैं. That's what the question is, you know.
1: Cycle.
0: तो इसका मतलब कई बार हम
1: जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात कई बार हो चुकी है.
0: हाँ, कई दिनों में हो चुके, कई बार हो चुके,
1: कई बार हो चुके हैं। आप गिनती कर सकते हैं कितनी बार हुई है। साइकिल है तो अगेन, अगर वो लीनियर होता तब आप कह सकते थे कब शुरू हुआ था, और अगर कभी शुरू हुआ था तो फिर फिनिश भी होगा, लेकिन साइकिल।
0: तो हम कई बार ये गेम खेलते आ रहे हैं,
1: एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी, क्योंकि कोई चीज अगर आपने कई बार की है देन
0: आपको पता है कि आगे भी क्या।
1: इट्स वेरी इजी। सी, जब हमें शिव बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं तो हम आत्माएं उस समय बिल्कुल कमजोर होती हैं, एकदम थकी हुई जैसे, यू नो, टायर्ड एट द एंड ऑफ द गेम। एंड परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि हे आत्माएं, तुम 100% प्योर थे, यू नो, तुम्हें अब फिर से 100% सोल कॉन्शियस बनना है। वेरी डिफिकल्ट इट सीम्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट, कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो हाउ इज इट पॉसिबल कि एकदम 100% बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस पे जाना है, एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जब यू नो पीस एंड प्योरिटी एंड लव इज योर नेचुरल। पहली बार सुनने में इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब हमें समय का ज्ञान मिलता है उससे सारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। क्यों? आप आत्मा ही वैसे थे, आप थे 100% प्योर, आप वो 100% प्योरिटी से अब एकदम इम्प्योर वाले लेवल पर आए, लेकिन थे आप, और फिर आप इस इम्प्योरिटी के लेवल से फिर से प्योरिटी के लेवल पे जाएंगे।
0: आप ही जाओगे, कोई
1: आप
0: और
1: ही जाओगे, और आपने ये जंप पहले भी किया है, क्योंकि ये साइकिल पहले भी घूमा है, तो आप थे, आपने पहले भी ये किया है, जो चीज आपने इतनी बार की है वो अब आप एक बार फिर करने वाले हो, देन इट बिकम्स मच मच इजियर। यू रियलाइज आई वॉज दैट, यू नो, somebody has to motivate दिल से, you've done it before, so now you can do it again. But if somebody asks me to do something which I've never done before, it'll be little challenging. But if I've done it so many times before, then it's simple. तो इसलिए समय को पहचानने से सब कुछ बहुत सिंपल होने लगता है, क्योंकि मैं थी क्लीन, मैं गंदी हो गई हूँ, मुझे फिर से क्लीन होना है, बट आई वॉज क्लीन।
0: कई बार ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, मैंने ये देखा हुआ है पहली बार। इनफैक्ट बहुत से हमारे ऑडियंस, हमारे पास इस तरह की अगर हम किताबें भी उठाकर देखें तो बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं कि ये सिचुएशन मैंने पहले देखी हुई है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये जगह पे मैं आया हुआ हूँ।
1: यस, ये मेजोरिटी मेरे को लगता है हम सबके साथ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर सीन में होते हैं, एक दृश्य में होते हैं, और हमें लगता है ऐसे के ऐसे मैंने इस दृश्य को पहले देखा है, यही के यही लोग थे, यही का यही बिल्कुल ऐसा हो रहा था, बट इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन। तो ये व्हाट इज दिस, अगर वो सीन पहले कभी हुआ ही नहीं है तो हाउ कैन आई फील कि मैंने वो देखा है। लेकिन अब हमें समझ में आता है, बिकॉज द साइकिल इज अ रेपिटेशन, इट इज मूविंग एंड मूव्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो जो सीन आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले भी
0: हो चुका है।
1: जो हो चुका है वो यहाँ स्टोर्ड है, और इसीलिए जो चीज यहाँ स्टोर्ड है जब वो फिर से होती है, और अगर वो हम क्लैरिटी से अपनी पास्ट मेमोरी को ले आए तो हमें लगता है हाँ यही का यही सीन हो चुका है। कई बार हम कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि आज ये होने वाला है, यू नो, इंट्यूशन। इंट्यूशन भी कैसे होता है? इंट्यूशन के पीछे भी यही लॉजिक है, क्योंकि आज जो होने वाला है वो पहले हो चुका है, बिकॉज इट्स अ साइकिल। तो इंट्यूशन भी इसी पर आधारित है, क्योंकि आज जो मेरा कल, जो मेरा फ्यूचर है, इट्स आई एम एट दिस पॉइंट इन द साइकिल एंड दिस पॉइंट इज माय फ्यूचर, इट्स माय टुमारो, बट इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द साइकिल देन दिस पॉइंट इज ऑल्सो माय पास्ट।
0: ओके,
1: सी, लुक एट इट ऑन अ साइकिल, हियर आई एम टुडे, दिस इज माय टुमारो, but then if I look at it from here, this is my yesterday. So that's why, because it's my yesterday, तो yesterday तो याद है,
0: it's somewhere there in my mind,
1: यहाँ है। तो जितना जितना माइंड को साइलेंट करते जाएंगे तो वो yesterday याद आता जाएगा, और जितना yesterday याद आएगा टुमोरो पता लगता जाएगा।
0: नाउ द टाइम इज कि वी हैव टू बिकम प्रोएक्टिव,
1: एब्सोल्युटली, बिकॉज अब हमें बहुत कुछ करना है। नाउ इज नॉट द टाइम कि वी कैन जस्ट सिट बैक एंड से कि जो होना है वो, क्योंकि बाहर का परिवर्तन जितनी तीव्र गति से होगा उससे ज्यादा तीव्र गति से हमें अपना आंतरिक परिवर्तन चाहिए, क्योंकि केओस बाहर बढ़ेगा, यू नो, ऑर्डर्ड टू केओटिक स्टेज, तो जो बाह्य चीजें हैं वो अभी तक ऑर्डर्ड से क्योटिक स्टेज में जा रहे हैं और अभी भी और क्योटिक स्टेज में जाने वाले हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की या न्यूक्लियर वट एवर एवरीथिंग, तो वो जो क्योटिक स्टेज है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है. वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैट राइट नाउ. द इनर स्टेज, क्योंकि जब इनर स्टेज क्योटिक स्टेज से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी तब बाहर वाली स्थिति
0: चेंज हो जाएगी,
1: फिर से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी. लेकिन पहले जिम्मेवारी आत्मा पर,
0: क्योंकि अगर हम अपनी जर्नी भी देखें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी या क्योटिक स्टेज में हम इंटरनली आए थे बेसिकली, यू नो,
1: वो पर्यावरण हाँ एकदम अच्छा था. तो सारा कुछ पहले आत्मा में होता है, फिर उसका प्रभाव प्रकृति पर होता है. आत्मा प्योर, प्रकृति प्योर. आत्मा धीरे धीरे इम्प्योर होती गई, उसके फलस्वरूप धीरे धीरे प्रकृति इम्प्योर हो गई. अब अगर आत्मा वेट करे कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊं, इट विल नॉट हैपन. रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम पर है कि मुझे अब फिर से वो 100% प्योरिटी पे जाना है, प्रकृति फिर अपने आप ठीक हो जाएगी. तो इसीलिए अभी का जो समय है, वी आर एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन द वर्ल्ड साइकिल, क्योंकि अभी तक जो था बैटरी डिस्चार्ज होने का समय था, नेचुरल है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता. बैटरी चार्ज हुई थी, यूज किया, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई. लेकिन डिस्चार्ज से चार्ज
0: उसमें टाइम लगता है, और जब लास्ट
1: टाइम नहीं, उसमें थोड़ा सा एफर्ट
0: भी करना पड़ता है, और जब लास्ट से एंड खत्म होती है तो एकदम से होती है.
1: हाँ, बिकॉज इसीलिए हमें पता चल रहा है कि अभी जो डिक्लाइन है ऑन अ मॉरल सोशल फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल लेवल, दैट डिक्लाइन इज वेरी वेरी फास्ट. यू नो, मोबाइल भी चार्ज करके चलते हैं तो सारा दिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, लेकिन एंड की दो लाइन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. तो अभी हम वो ही समय पर पहुंच रहे हैं जो डिक्लाइन बहुत फास्ट होगा, तो इसलिए वो फिनिश तो होगा नहीं, लेकिन उससे पहले अपने आप को फिर से चार्ज करना पड़ेगा. और चार्ज से डिस्चार्ज हम अपने आप हो गए थे, इसलिए परमात्मा का उसमें कोई रोल नहीं था. लेकिन अब डिस्चार्ज से चार्ज, वो जो एक जंप है, ये बहुत हाई जंप है, और ये हम आत्मा अपने आप नहीं कर सकती है. एंड तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है. एंड ये अब का जो समय है जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, कनेक्शन होता है, या हम कहें आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, और इसीलिए इस समय को हम संगम युग कहते हैं. अब हम कलयुग में वैसे तो हैं, जब तक हमें अपना और परमात्मा का परिचय नहीं, लेकिन जब हमें वो परिचय मिल गया, कनेक्शन जुड़ गया, अब हमारी जीवन कलयुग वाली नहीं, अब हम वो संगम के समय पर हैं. तो दिस पीरियड इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज, संगम. किसका संगम? आत्मा और परमात्मा का संगम.
0: स्ट्रेंथन्ड एक्चुअली,
1: यस. एंड दैट्स व्हाई दिस एज इज कॉल्ड द डायमंड एज, क्योंकि दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एज ऑफ द होल साइकिल. क्योंकि आत्मा का अपने पिता के साथ संगम है इस समय. सारे साइकिल में तो हम डिस्चार्ज होते आए, नो बिग डील, नेचुरल. लेकिन जब चार्ज होने का समय है, दैट इज अ बिग जंप फॉर द सोल. तो दिस एज इज द डायमंड एज. तो हम सब आत्माएं अभी एक मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड से गुजर रहे हैं ऑलरेडी. जो आने वाला समय है वो तो सुंदर है ही है, दैट इज द गोल्डन एज. लेकिन अभी जो समय चल रहा है जहां आत्मा अपने पिता से फिर संबंध जोड़ती है, ये संगम युग है.
0: मोस्ट एक्साइटिंग
1: वेर यू कैन सी See what is the difference between golden age and now. Golden age में सब कुछ ही अच्छा है, you know? तो आपको अच्छाई का भी एक्सपीरियंस कब होता है? जब आपने अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को साथ साथ देखा हो. सत्युग में आप हमें फील भी नहीं होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बिकॉज होगा ही अच्छा,
0: नेचुरल,
1: इट विल बी नेचुरल. सुख क्या होता है वो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुख क्या होता है उसकी अनुभूति नहीं है. लेकिन अभी का जो समय है, जहां अभी हमारा जीवन दुखी है, अशांत है, परेशान है, और इसमें परमात्मा से संबंध जोड़ के हम उसी कलयुगी समय में रहते हुए जहां चारों तरफ त्राही है, अगर हम अपने जीवन को वो सुखी, पवित्र और शांत स्वरूप बना सकते हैं, तब वो जीवन कैसे होगी?
0: That's in fact yes.
1: And that's why it's the most valuable period. It's that's why you know we're not waiting for Satyug to come. No, we're not, because this period is more beautiful than that because my life becomes so beautiful right now. तो ये वो संगम युग है, कलयुग से सतयुग, इन दोनों का भी संगम है अभी, और आत्मा और परमात्मा का भी संगम है. सो दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो घड़ी जो अब है वो बस 12 बजने को कुछ ही मिनट पर, कुछ ही मिनट भी नहीं कहेंगे अब तो, आकर पहुंची है. एंड इट इज जस्ट टू मूव एंड द साइकिल हैज टू बिगिन ऑल ओवर अगेन. तो दिस इज दैट पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जहां from 100%, not 100%, but very impure, we will jump to a stage of 100% pure. और उसको करने का तरीका कैसे होगा?
0: What I can feel is the meditation.
1: Yeah.
0: The way I link, because that, see, if we look at, मुझे लगता भी है कि सारे दर्शक जो हमारे देख भी रहे हैं प्रोग्राम, हमारे इस परिवार का हिस्सा है कि अब दिन का सबसे खूबसूरत वक्त वो हो गया है जब हम वो मेडिटेशन में बैठे होते
1: yes.
0: हैं. You know, it has, maybe it's 10 minutes, maybe it's 15 minutes, maybe it's half an hour. But that's the period you actually look forward
1: right.
0: to. And if you miss it, you don't like it. You,
1: right.
0: know? you want it to be there.
1: Say. तो अभी के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में दो चीजें होंगी. मेडिटेशन, मेडिटेशन से क्या होगा कि आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, they will re-emerge. वो कॉन्शियसनेस फिर से आती जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस जो अब आएगी वो ही हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देगी. सत्युग में जाने के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए? यू नो, जो हम सोल कॉन्शियसनेस, बिकॉज द सोल ओवर देयर वॉज इन 100% सोल कॉन्शियसनेस. अब परमात्मा आकर हमें वापस उस सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो जहां वो कॉन्शियसनेस अभी हमने अपने अंदर जागृत की, तो वही अवेयरनेस कि हम क्या थे वो फिर से जागृत होने लगेगी. पीस, प्योरिटी, लव, पावर, जो कि हमारी ओरिजिनल संस्कार थे, लेकिन इतने सब युगों के बाद वो स्टैक जो था संस्कार का, तो ये सारे संस्कार एकदम नीचे चले गए थे स्टैक में. तो मेडिटेशन क्या करेगा? नीचे से इनको एकदम ऊपर के लेयर में ले आ जाएगा, और हमें वो अवस्था में ले आएगा जो हम थे और जो अब हम बनेंगे घर जाने से पहले. क्योंकि द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी क्वाइट केओटिक आउटसाइड. You know, the outside cleaning process will take place. Transformation क्या होती है? एक तरफ पुराना घर टूटता है और दूसरी तरफ नया घर बनता है. तो एक तरफ कलयुग का परिवर्तन होगा, सृष्टि का परिवर्तन होगा. जो हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग, स्नो मेल्टिंग, वी से 20 feet द सी लेवल विल राइज, ऑल दिस विल हैपन.
0: प्रलय की बात की जाती थी.
1: हाँ, तो ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ये सारे ही तो विधि है जिससे सृष्टि की सफाई होगी. यू नो, पर्यावरण की सफाई होनी है. सत्योगी दुनिया कैसी होगी? एनवायरमेंट विल बी 100% प्योर. तो वो कब होगा? जब ये सफाई होगी. तो वी विल गो थ्रू दैट लिटिल क्रिटिकल पीरियड, लेकिन जो अंदर से स्टेबल होंगे उनके लिए वो पीरियड भी कब आकर निकल जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा.
0: क्योंकि आई थिंक वो ऑलरेडी चार्ज्ड और ऑलरेडी उस अवेयरनेस में रहने शुरू.
1: एब्सोल्युटली. तो इसलिए इंटरनली हम अपने आप को उतना पावरफुल, उतना प्योर बनाएंगे. दो काम हम अभी कर रहे हैं. एक, अपने ओरिजिनल संस्कार्स को फिर से री इमर्ज कर रहे हैं, और ये ओरिजिनल संस्कार्स मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होंगे जिनको लेकर मैं अपने घर जाऊंगी परम धाम, और फिर से वो साइकिल के बिगिनिंग में फिर आ जाऊंगे. एंड दूसरा, जितने मैंने पीछे कॉर्पोरेट से बहुत सारे जो विक्रम किए हैं जिसका हिसाब किताब हमें अभी चुक तो करना पड़ता है, तो वो भी हम योग से चुक तो करते हैं. जैसे कार्मिक फिलोसफी की जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इज देयर नो वे कि हम इसको सेटल कर सके. तो जितना अभी डिक्लाइन हो रहा है तो हमें भोगना की फीलिंग ज्यादा आ रही है ना. सफरिंग हैज इंक्रीज्ड. तो ये सफरिंग को कम करने का दो ही तरीका है, कम या फिनिश करना है हमें, या तो भोग के या योग से. और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सब आत्माओं को अपने घर जाना है और सब आत्माओं को सारा ये अकाउंट जो यहाँ क्रिएट किया था वो सेटल करके जाना है, प्योरिफाई होकर जाना है. तो प्योरिफाई होने का दो तरीका है, या तो भोग के, जिसको हम कहते हैं सजा भोग के, जिसका आज दिन तक हम सुनते थे कि ऊपर जाएंगे तो सजा मिलेगी. तो सजा कहीं ऊपर नहीं, वो सारी सजाएं हमें यहीं मिलती हैं. हर पल जब हम दुखी होते हैं उससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती है, दर्द में होते हैं, वो ही हमारी सजा है। तो वो सारा जो अकाउंट हमें सेटल करना है, या तो दुख दर्द यहाँ भोग के, या फिर योग से। तो जितना हम योग करेंगे अभी, परमात्मा से वो कनेक्शन जोड़ेंगे, पुराना हिसाब किताब चुक तो करते जाएंगे, ओरिजिनल संस्कार्स इमर्ज करते जाएंगे, उतना दुख और दर्द की फीलिंग
0: कम होती जाएगी।
1: एंड जितना आपकी सफरिंग कम होती गई, मतलब उतने आपके अकाउंट्स
0: सेटल होते गए।
1: क्योंकि जितना टाइम क्रिटिकल और आता जाएगा, सफरिंग और भी बढ़ती जाएगी। तो जितना हम अपनी तैयारी अभी कर लेते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के, वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बिगिन करते हैं, तो बाहर सफाई चल रही होगी, लेकिन अंदर की तैयारी
0: जो है वो पूरी
1: उससे पहले हो जाएगी। सो वील बी एबल टू क्रॉस दैट टाइम वेरी ब्यूटिफुली, एंड इवन नाउ लाइफ विल बिकम वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी ब्यूटिफुल।
0: ये जो पूरी हमारी आज बातचीत रही, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त की तैयारी, सुबह की तैयारी हमें अभी करनी है, चाहे घोर कालिमा है, लेकिन इसी रात में हम तैयारी कर सकते हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। मानते हैं कि क्योस है, मानते हैं कि त्राही त्राही मची है, लेकिन जैसे हमने अपने अंदर, हमने पहले भी ये बात की थी कि बदलाव अपने ही अंदर आएगा, अब जब हमने इस पूरे चक्र को समझ लिया है, काल चक्र जिसे कहा जाता है, समय का चक्र, समय की सच्चाई, तो फिर आने वाला जो स्वर्ण युग है, जो गोल्डन एरा है, वो इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी जो युग है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का वो मिलन हो रहा है जो किसी और युग में नहीं हुआ है। तो हम इस डायमंड युग को, इस संगम युग को भी एंजॉय कर सकते हैं, आने वाला जो भी क्यों सामने है उसकी तैयारी कर सकते हैं, और फिर उस स्वर्ण युग या गोल्डन एज की इमेजिनेशन कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जिसका जवाब आप तलाश रहे हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
0: हमने स्वयं को भी पहचान लिया, सारी जानकारी हमें मिल गई है, समय चक्र भी पता चल गया, लेकिन परमात्मा जिनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि शिव बाबा आ चुके हैं और स्वयं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, उस युग में हमें लेकर जाएंगे, तो कहाँ है वो, उन्हें तलाशना भी बाकी है। तो अगली कड़ी में हम सीधा संपर्क जोड़ेंगे शिव बाबा से। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनु।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी।

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: Oh, oh, oh.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस लई एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: हुण थोड़े मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस लई एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
0: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji. Stay tuned.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।